वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला।

0: सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूम

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान ऐं अमरीका विच में मुफ़ाहमती यादाशनामे ते ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो अॼु थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल रासिम मुनीर शिरकत लाइ स्विट्ज़रलैंड पहुची विया। ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कारीबाद जी सरबराई में ज़ेवरेज पहुतल। अमरीकी नायब सदर जे डिवेंस में स्विट्ज़रलैंड रवानो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ भारत सदर वफ़द सां गॾु ज़ेवरेज रवानो थी रहियो आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जे तहरान में ईरान सदर मसूद पशियान सां मुलाक़ात। ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर समेत ख़िते सूरतहाल ऐं जंगबंदी मुआदे ते ॻाल्हियूं।

इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जी सख़्त रद अमलबाद फ़ौज के लबनान में कार्रवाइयूं रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इसराइली मीडिया जो चवणु आहे त नेतन्याहू बचाव वारे वज़ीर इसराइल कांड सां मशवरे बाद लबनान में हमला रोकण जो हुकुम ॾिनो। ईरान पारां मुआहिदे तां हथ खणण ऐं अपना हुरमस ॿीहर बंदि करण वारे चिताउ बाद अमरीकी सख़्त रद अमल ते इसराइल कार्रवाइयूं रोके छॾियूं। हुन खां अॻु लबनान जे मुख़्तलिफ़ जहरनि ते इसराइल जी फ़ौज बमबारी में 7 शहरी शहीद ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी विया। राति वीगो गाॾी जी मोटरसाइकिल खे टकर लॻण सबबु औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 5 ॼणा फोत। हादसे में सिकंदर जोगी फिदा हुसैन समेत ॿिया फोत थी विया। समूरनि फोतनि जा लाश गिम्स इस्पताल मुंतकिल कया विया। पुलिस मूजिबि वीगो गाॾी खे तहवील में वठी मालिकनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे।

0: शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 73 जन्म ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दंग ॾिना, जुरत ॾिनी, क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। अथसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खे जमूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौरु यादि करे थी। टणो मोमिन ख़ान में पुल न हुजण सबबि जनाज़ो सिमनाले मां गुज़ारियो वियो। वीडियो वायरल। कोट हामिद चांडियो में फोती अमीर बख़्श चांवरी जनाज़ो कारो घुंघरो सिमनाले मां गुज़ारियो वियो। ॻोठाणो जो चवण आहे त इंतिज़ामिया जी नाअहली लाइ हिकु पुल बि ठाराए न ॾिनी वई। ॻोठ में ॿिनि बुनियादी सहूलतुनि जी खोट सबबि ज़िंदगी अज़ाब बणियल आहे। ऐं मटियारी भरिसां नौजवान जो सिंधु दरिया मला छत कचे में काठियूं करण लाइ वियल हाला पुराणा वासी आयू भटी बुरी फौत थी वियो। लाश घर पहुचण ते रोज ॾाढो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचणंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
10: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
11: D Skin Beauty Cream. Asli glow har din jo show. A product by Biocon International Pakistan.

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गन स्टॉक पहुची वो है। ताज़ा तरीन अवे फोटेज ॾेखारियूं पिया। बर्गन स्टॉक पहुची वो है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गन स्टॉक पहुची वो है। ताज़ा तरीन मंज़र अवे ॾेखारियूं पिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गन स्टॉक पहुची वो है। अमरीका ईरान हवाले सां जेका मुज़ाकरात थी रहिया आहिनि उते मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गन स्टॉक पहुतल आहिनि। ताज़ा तरीन फुटेज तव्हांखे असीं ॾेखारियूं पिया। अमरीका ईरान जे मुज़ाकरात जे हवाले सां बर्गन स्टॉक थी रहिया आहिनि जिते मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गन स्टॉक पहुतल आहिनि।

0: ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ स्टीव विटकॉफ ऐं जेड कुशनर अॻु खां स्विट्ज़रलैंड में मौजूदु आहिनि, जिथे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गिन स्टाक पहुतल आहिनि, जिथे ईरान अमरीका जंग जे हवाले सां मुज़ाकरात थी रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड पहुची वियो आहे। आला सिता तकरीब में शिरकत करण लाइ वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड जे शहर स्टॉक पहुतल आहिनि। अव्हांखे लाइव ॾेखारियूं पिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर में शिरकत लाइ बर्गन स्टॉक पहुतल आहिनि। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो केटीएन न्यूज़।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
3: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत, और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम।

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

खुद को ही पहचानने आया, साजन खुद को जानने आया, काम न था कोई और, जानबूझकर अपने आप से इश्क लड़ाने आया, अर्श से खाकी फर्श पे साजन प्रीत निभाने आया, सूली पर मंसूर बना और प्रीत जताने आया, सच्चू इस संसार में साजन

ॻाल्हियूं स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में जारी। ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सिराज मुनीर बि शरीक। नायब अमरीकी सदर जे डी वेंस जे सरबराही में स्टेफवेटकोफ, एयर कमिश्नर मौजूद। ईरानी वफ़द जी सरबराही स्पीकर बाकर कालीबाद सरबराही करे रहियो आहे। ईरानी परडे वज़ीर अब्बास इराकची, ईरानी मर्कज़ी बैंक जो गवर्नर ऐं ॿिया बि मौजूदु।

मोटर आईबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी टे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: कॉस्मेटिक माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहर। 0303-85-569।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं हवा ऐं पाइप 2-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8101।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

पाकिस्तान जी अमुन कोशिशों जरिए ईरान ए अमरीका मुफाहमती यादाश्त नामे ते बेमरले जी गारंडा भी गड थी व्या। ईरान ए अमरीका विच में मुफाहमती यादाश्त नामे ते बेमरले ला गारन स्विट्जरलैंड शहर बर्गन स्टॉक में जारी। गारन में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सर आसिफ मुनीर पर शरीक, नायब अमरीकी सदर जेरी वेंस सरबराई में एस्टोविटकोफ ए जेर्ड किश्नर मौजूद। ईरानी वफद सरबराई स्पीकर बाकर कालीबाज सरबराई कर रो है। ईरानी परी वजीर अब्बास इराकची, ईरानी मरकजी बैंक जो गवर्नर ए मियाप मौजूद।

इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जे सख़्त रद अमल बाद फ़ौज खे लबनान में कार्रवाई रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इसराइली मीडिया जो चवण आहे त नेतन्याहू बचाव वारे वज़ीर इसराइल कांड सां मशवरे बाद लबनान में हमला रोकण जो हुकुम ॾिनो। ईरान पारां मुआदे तां हथ खणण ऐं अपने हुरमत दीर बंदि करण वारे चिताव बाद अमरीका जे सख़्त रद अमल ते इसराइल कार्रवाई रोके छॾियूं। हुन खां अॻु लबनान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते इसराइली फ़ौज जी बमबारी में 7 शहरी शहीद ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी विया।

शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो 73 जन्म दिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनजीर भुट्टो खे जनम ॾियारी जे मौक़े ते भेट पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी खुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनजीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़ुआनी बि कई वई। कंदकोट ऐं ॿिनि शहरनि में केक काटे शहीद बेनजीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

डीपीएमपीए नईम खरल कैंसर सबब कराची के निजी अस्पताल में लाराणो करे वो नईम खरल केतरे अर्से का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुबतला हो। नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट तक पंज भेरा एमपीए चूंडियो पो। सन वेझो कोयले की खाण में बपोरत फौत खाण में लड़ने दौरान ड्रम जो जंजीर टुटी पो। हादसे सबब जुम्मन ए नादर राजर फौत थी वह। फौत थियल पौतन जा ला जरूरी कार्रवाई लाइ मकामी अस्पताल मुंतकिल किया वह। समारोह वेझो शादी का इनकार से नारी मंगे के हथा कुहाड़ू हणी कतल। घोट गुलाम हुसैन खोसो में जवाबदार गुलाम रसूल खोसो पेंजी मंगेदी असमा खोसो के कतल कर छो। ला जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। वाकई जो केस दाखिल।

सिठा जमा चायर महीनों का मुबैन तौर से अगवा जानल निगरी बाजियाब नी आसफा मुगल की बाजियाब लाइ वारसन पारा पैदल मार्च सिठा जमा निकतल नारी जा वारस एस एस पी खैरपुर तीन पैदल मार्च कारसन चुनाया तो पुलिस रुगो आसरा दे रही है निगरी बाजियाब कराए परेशानी खत्म कई वे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-8569।
6: अदा
7: वालेकुम असलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी।
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर

0: School System, Mehrapur 0301-386-5453.
1: Ashik Honda Showroom, Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Trooper at Mat Aimba Akhtar 3S Dealer Ashik Honda Motors, Mehrapur Jite Nai Motorcycle Ji Sale Company Ajay Mukarar Kel Rate De Dastiyab Ahe Service Center Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle Ji Behtreen Service Kaivendi Ahe Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts Khususi Riyat De Maujood Ashik Honda Motors Te Pahenje Honda Motorcycle Ji Tuning Karayo Computerized Japanese Stitching Machine Je Zariye जहमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0303 35 92 120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8101।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचणंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3883-5569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

खुद को ही पहचानने आया, साजन खुद को जानने आया, काम न था कोई और, जानबूझकर अपने आप से इश्क लड़ाने आया, अर्श से खाकी फर्श पे साजन प्रीत निभाने आया, सूली पर मंसूर बना और प्रीत जताने आया, सच्चू इस संसार में साजन

0: ये कौन, यही सच्चल की शायरी का मरकजो महवर है। मौजू के एतबार से सच्चल का कलाम हमा ओस्त और मंसूरी मसलक का तर्जुमान है।
1: सच्चल का ज्यादातर कलाम रिंदी, बेबाकी, जज्ब और सरमस्ती का आईनादार है। इसमें कैफो दिलकशी, हुस्न रंगीनी कूट कूट कर भरी हुई है और कभी कभी इज्जो इंकसारी और कहीं कहीं हुस्न इश्क।
0: साईं सच्चल सरमस्त के नजदीक सच्ची लगन, दुख और मुसीबतें झेलने से ही तालिब विसाले महबूब से हमकिनार हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत ही के जरिए लोगों के दिलों में अपने लिए मकाम पैदा किया जा सकता है।
1: आपके ख्याल में दुख राह इश्क के हक का पहला कदम है। सोजो फिराक, मसाइब व आलाम के बगैर रूह इंसानी पाकीज़गी की हकीकी मंजिल नहीं पा सकती।
0: तालिब अपने महबूब का वसल हासिल करने के बाद हर किस्म की पाबंदियों से आजाद हो जाता।

0: में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान एटमी हथियार न ठाहिण वारी मौक़िफ़ ते सहियूं करे छॾियूं आहिनि। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त ईरान सदाई वाज़े कयो आहे त हू एटमी हथियार नथो ठाहिण चाहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त अमरीका खे इहा ॻणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती यादाश नामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। क़तर में मंझंदि ईरान जा $6 अरब जा असासा बहाल कया वञनि। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे ते ॿिए मरहले जी ॻाल्हियुनि दौरान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ नायब अमरीकी सदर जे डी विंस विच में मुलाकात। स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्ग स्टॉक में मुलाक़ात दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि मौजूदु। अमरीकी नायब सदर जे डी विंस चयो त असां पाकिस्तान सां मुहबत कंदा आहियूं। पाकिस्तान अमन लाइ बहितरीन किरदारु अदा कयो आहे। अमरीकी नायब सदर अमरीकी सदर विच में ओभर बाबति ख़ासि नुमाइंदो स्टीव विटकोफ ऐं डोनाल्ड ट्रंप जो नाटी जेड कुशनर बि मौजूदु हो।

इस्लामाबाद मफामत यादाश नामे ते बेमरल लागालियो स्विट्जरलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में जारी गालन में वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक नायब अमरीकी सदर जेडेविन की सरबराही में स्टीव विटकोव जेयर्ड कुशनर मौजूद ईरानी वफद की सरबराही में स्पीकर बाकर कालीबाज सरबराही कर रहा है ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची ईरानी मरकजी बैंक जो गवर्नर ए बया मौजूद ईरान इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे के बे दौर की गाल में लबनान में जंगबंदी के मरकजी नुक्तों करार दई छो ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बाकाई है त अमरीका लबनान में जंगबंदी यकीन बनाने में नाकाम रो है असासन की बहाली ईरानी तेल त पाबंदी जो खात्मो मुतालबा भी गाल हिस्सों होंदा।

0: शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 73 जन्म ॾियारो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जनम ॾियारे जे मौक़े ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी खुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़ानी बि कई वई। कंबर कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना। जुरत ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमीद जे अलामत तौरु यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी तरक़ी पसंद ऐं चयन सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक़ बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बीबी जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण चयो आहे त अमरीका ईरान मुआहिदे में फील्ड मार्शल जो किरदारु बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमन पसंद मुल्क तौरु सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विचोभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदारु अदा कयो। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमण चयो त शहीद राणी जी सोच विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशले राह आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणजी गुज़ारी। शहीद राणी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। शहीद राणी मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी।

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: 3595120
3: हलंदी आहे
4: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: वजीर मोहसिन नकवी भी शरीक। ईरानी वफद में स्पीकर बाकर कालीबाफ, ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची बया भी मौजूद। पाकिस्तानी वफद अमरीकी वफद में गालन की सरबराही कंदड़ नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, स्टेफ विटकोफ, जेरेड कुशनर बेन से मुलाकात कई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो चवण हो तो असा पाकिस्तान से मोहब्बत कंदा आयूं, पाकिस्तान अमुन लाय बेहतरीन किरदार अदा कयो आहे। ईरान एटमी हथियार न ठाहिण वरी मौक़िफ ते सयूं करे छॾियूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त ईरान सदाई वाज़े कयो हू एटमी हथियार नथो ठाहिण चाहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान जो चवण हो त अमरीका खे इहा गणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती याददाश्त नामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। कतर में मंजमन ईरान जा $6 अरब जा असासा फौरन बहाल कया वञनि। ईरान इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जे ॿिए दौर जी ॻाल्हियुनि में लबनान में जंगबंदीअ खे मर्कज़ी नुक़्तो करार ॾेई छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई जो चवण हो त अमरीका लबनान में जंगबंदी यकीनी बणाइण में नाकाम रहियो आहे। असासन जी बहाली ऐं ईरानी तेल तां पाबंदीअ जो ख़ात्मो मुतालबा बि ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 73वां जनम ॾिहाड़ो अॼु मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जनम ॾिहाड़े जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ खे राय सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में बि शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़्वानी कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में बि केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना, जुरत ॾिनी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौरु यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक़, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बीबीअ जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान मुआदे में फील्ड मार्शल जो किरदारु बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौरु सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विच ओभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदारु अदा कयो। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन चयो त शहीद राणे जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशल राह आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणिजी गुज़ारी। शहीद राणी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणिजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

पीपल्स पार्टी एमपीए नईम खरल कैंसर सबब कराची की एक खानगी अस्पताल में लाडानो कर वो। नईम खरल केतरे ही अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो। नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट ता पंज भेरा एमपीए चूंडियो वो। सनभर से कोयले की खान में बोरत फौत। खान में लहन दौरान ड्रम जो जंजीरू टुटी पय। हादसे सबब जुम्मन ए नादर राजड़ फौत थी वया। फौत थियल पोरतन जा लाश जरूरी कार्रवाई लाए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया वया। सामारो भरसा शादी का इनकार ते नारी मंगे दे हथा कुहाड़ी हणी कतल। गोठ गुलाम हुसैन खोसो में जवाबदार गुलाम रसूल खोसो पंजी मंगे दी असमा खोसो के कतल करे छड़ियो। लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। वाके जो केस दाखिल।

घारो वेझो शहीद थियल बिन पुलिस अहलकारनि जी जनाज़ नमाज़ टंडो अलिहाल में अदा कई वई। शहीद अहलकारनि अकबर मरी ऐं मजीद मरी जी सरकारी एज़ाज़ सां तदफीन सलामी बि पेश। शहीद पुलिस जे वारसनि शहीद अहलकारनि जी शहादत वारे वाके जो ज़िमेवार टंडो अलिहाल ऐं ठठे जे एस एस पी खे करार ॾेई छॾियो। वारसनि जो चवणु हो त एस एस पी टंडो अलिहाल ॿिन्ही पुलिस अहलकारनि खे ज़िले बदर कयो, जंहिं सबबि हू परेशान हुआ। एस एस पी ठठो अहलकारनि खे अहिड़े हंधि मुक़ररु कयो जिते केर बि वञण लाइ तयारु न हो। कंबर ऐं लखी गुलाम शाह में आई बी ए टेस्ट पास उमेदवारनि पारां ऑफर आर्डर नंबरनि ख़िलाफ़ احتجاج। उमेदवारनि जो चवणु हो त इम्तिहान में 40 खां वधीक मार्कूं खणी पास थिया आहियूं, 4 साल खां ऑफर आर्डर न पिया ॾिना वञनि। समूरी सिंध में केतिरे ई वक़्त खां احتجاج करे रहिया आहियूं, पर सरकार तदारुक नाहे कयो। लाड़काणे में पाणी खोट औरतुनि जे कतलेआम ऐं ज़मीननि ते वालार ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली, अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जे सदे ते कारकुननि जनाबाग खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी। अॻवाननि जो चवणु आहे त पंजाब जा फ्लैट कैनाल खोले सिंध जे हिसे जो पाणी गैर क़ानूनी तौरु रोकियो पियो वञे। सिंध में धाड़ियल राज खे सरकार जी सरपरस्ती हासिलु आहे, माण्हू घरनि में बि महफ़ूज़ न आहिनि। कंबर में प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ जसकम जो احتجاج, ॿारनि जंजीर पाए शिरकत कई। कारकुननि क्रिकेट ग्राउंड खां प्रेस क्लब ताईं احتجاجی रैली कढी मुज़ाहिरो कयो। अॻवाननि जो चवणु हो त सरकार 5 साल गुज़रण बावजूद प्रिया कुमारीअ खे बाज़ियाब नाहे कराए सघी। प्रिया जी अमड़ दाहूं कंदे मासूम धीउ बाज़ियाब कराइण जूं अपीलूं करे रही आहे। प्रिया कुमारी सिंध जी नियाणी आहे, खेसि जल्द आज़ादु न करायो वियो त सॼी सिंध में احتجاج कंदासीं।

सेठा जामा चार महीनन का मुबैना अगवा जाने निंगरी बाजियाब नथी आसफा मुगल जी बाजियाब लाए वारसन पारा पैदल मार्च सेठा जामा निकतल नारी जा वारिस एसएसपी खैरपुर तई पैदल मार्च कंदा वारसन जो चवण है त पुलिस रुगो आसरा दे रही है निंगरी बाजियाब कराए परेशानी खत्म की वणी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-180-003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

खुद को ही पहचानने आया, साजन खुद को जानने आया, काम न था कोई और, जानबूझकर अपने आप से इश्क लड़ाने आया, अर्श से खाकी फर्श पे साजन प्रीत निभाने आया, सूली पर मंसूर बना और प्रीत जताने आया, सच्चू इस संसार में साजन

0: आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। कभी बेताब होकर उठता और कभी बेचैन होकर एक तारा उठा के खुले मैदान में चला जाता और इश्क को सरमस्ती में झूमता, नाचता, गाता रहता।
1: इश्क की सरमस्ती और सरशारी में सारी कायनात निगाहों से ऊझल हो जाती और सिर्फ सच बाकी रह जाता, जो सरासर सरमस्ती और सरशारी में बसता। ये सचल सरमस्त की जात होती, मोहब्बत, उल्फत, चाहत और इश्क के हकीकी में डूबी हुई जात।
2: मिसले गुल हूँ और मेरी खुशबू है तू, या सराबे आरजू हूँ और रमे आहू है तू, मौजे पेचा हूँ किनारे जू है तू, दुश्नए तकदीर हूँ मैं जुम्बिश

0: ये कौन, यही सच्चल की शायरी का मरकजो महवर है। मौजू के एतबार से सच्चल का कलाम हमा ओस्त और मंसूरी मसलक का तर्जुमान है।
1: सच्चल का ज्यादातर कलाम रिंदी, बेबाकी, जज्ब और सरमस्ती का आईनादार है। इसमें कैफो दिलकशी, हुस्न रंगीनी कूट कूट कर भरी हुई है और कभी कभी इज्जो इंकसारी और कहीं कहीं हुस्न इश्क।
0: साईं सच्चल सरमस्त के नजदीक सच्ची लगन, दुख और मुसीबतें झेलने से ही तालिब विसाले महबूब से हमकिनार हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत ही के जरिए लोगों के दिलों में अपने लिए मकाम पैदा किया जा सकता है।

0: इस जैपनी स्ट्रेचिंग मशीन के जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8591
1: छो परेशान आहीं
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मिरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: एक्सपीरियंस लाहौती लाइव सेशंस।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सीड किसान की उम्मीद।

वेलकम बैक नादिन। हिकु दफ़ो ॿीहर वाक़िया आगाह कंदासीं। ईरान ऐं अमरीका विच में हिन वक़्तु स्विट्ज़रलैंड में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। कुझु देरि अॻु वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। बेल्गन स्टॉक में ही ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि। ईरान ऐं अमरीका विच में हिन वक़्तु स्विट्ज़रलैंड में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। बिर्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे। कुझु देरि बाद हिन अहम मफ़ामती यादाश्तनामे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर विच में ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे, जॾहिं त मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि, अहम ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जॾहिं त गृह वज़ीर मोहसिन नक़वी बि गॾु हिन वक़्तु वज़ीर आज़म सां गॾु मौजूदु आहिनि। बेल्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद एम ओ यू ते टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। बेल्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे। वज़ीर आज़म जो चवणो हो त ईरान ऐं अमरीका जी ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ वधीक चयो आहे त असां सभु गॾिजी दुनिया में अमुन क़ाइमु करे सघूं था। जे डी वेंस जो चवणो हो त ईरान ऐं अमरीका जी ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो अहम किरदारु आहे। अमरीकी नायब सदर जो वधीक चवणो हो त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त माण्हू आहे। ऐं स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में हिन वक़्तु ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद एम ओ यू तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। बर्गन मां मूंखे आगाह कयो पिया। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। जे डी वेंस पारां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण कई हुई। अमरीकी नायब सदर जो चवणु आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन सपेसालार आहे। जे डी वेंस वधीक चयो त ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो अहम किरदार रहियो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त असां सभु गॾिजी दुनिया में अमुन क़ाइमु करे सघूं था। बर्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद एम ओ यू तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ॻाल्हि ॿोल कई आहे। जे डी वेंस पारां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण बि कई वई आहे। अमरीकी नायब सदर जो चवणु आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन सपेसालार आहे। जे डी वेंस चयो त ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अहम किरदारु अदा कयो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे। वज़ीर आज़म वधीक चयो त असां सभु गॾिजी दुनिया में अमुन क़ाइमु करे सघूं था। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद एम ओ यू ते टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं हिन वक़्तु स्विट्ज़रलैंड में थियूं आहिनि। मफ़ामती यादाश्तनामे ते सहियूं बि थींदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। जे डी वेंस पारां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण कई वई आहे। अमरीकी नायब सदर जो चवणु आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन सपेसालार आहे। ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो अहम किरदारु रहियो आहे। ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे।

0: इन हवाले सां सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मगरी साहब असांखे जॉइन कयो आहे. आफ्ताब साहब, मां खे भलीकार चऊं था. ईरान ऐं अमरीका विच में जेका जंग जारी हुई उहा हिन वक़्तु ख़तम थियण जे वेझो आहे. स्विट्ज़रलैंड में ही अहम ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि ऐं मफ़ामती याददाश्त नामे ते कुझु देर बाद सयूं बि थींदियूं. पाकिस्तानी वफ़द बि हिन वक़्तु मौजूदु आहे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, जॾहिं त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ऐं ॿिए पासे अमरीकी वफ़द बि मौजूदु आहे. ईरानी वफ़द बि हिन वक़्तु मौजूदु आहे.
1: ॾिसो वक़्तु, हीअ तमामु वॾी हिकु कामयाबी आहे पाकिस्तान जे लाइ ऐं बिलख़ुसूस पूरी दुनिया जे लाइ. जेको अमन जो अलम जेको आहे सो पाकिस्तान खणी निकितो हुयो, त पाकिस्तान ख़ासि तौर ते ईरान ऐं अमरीका जे विच में जेका हलंदड़ जंग आहे उनखे कहिड़ी बि जेको आहे सो या जंग ख़तमु थिए ऐं मुआदे जी तरफ़ वञ अचे अचे अमरीका ऐं ईरान वेही करे किथे न किथे जेको आहे सो ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाए. त हिन वक़्तु अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान जी जेके कोशिशूं आहिनि उहे आलमी सतह ते पाकिस्तान ठहण खां वठी हिनमहिल ताईं केतिरनि ई मुल्कनि जूं पाकिस्तान सफ़ारती टेबल ते मदद करे चुको आहे. अगरि तव्हां माज़ी में वेंदो, तारीख़ में वेंदो, त ॾिसंदोसीं त एशिया ऐं पुर्तगाल जहिड़ा केतिरा ई मुल्क नज़र अचनि था जंहिंमें जेको आहे पाकिस्तान सफ़ारती टेबल ते उन्हनि जी मदद कई. इन सां गॾो गॾु अरब मुल्कनि सां गॾो गॾु दुनिया जे केतिरनि ई खेत्रनि में हलंदड़ जेके छिकताण हुई उन में अमन मिशन जेको यूएन जे तरफ़ां वफ़ाज़े पाकिस्तान उन में बि रहंदे जेको आहे सो अमन क़ाइम करण में हमेशह आलमी सतह ते आलमी दुनिया जी मददूं कयूं आहिनि. पर अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त सदर प्रेसिडेंट ट्रम्प बराह रास्त क़यादत सां जेके मुज़ाकरात ऐं ॻाल्हियुनि जी जेका ॻाल्हि कई आहे उहा वरी अहम आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मस आब ऑफ होर्मस जेको आहे सो जेको केतिरे वक़्त खां बंदि आहे उन बंदि हुजण सां न सही एशिया मगर एशिया सां गॾो गॾु यूरोपीय यूनियन ऐं केतिरा ई जेके मुल्क आहिनि उहे हिन वक़्तु बुहरान जो शिकार हुआ. हिकु तरफ़ जंग जेका आहे ईरान ऐं अमरीका ऐं इसराइल जे विच में हुई, पर माशी जंग जेका आहे जेके एशिया जा मुल्क आहिनि ऐं अफ्रीका जा मुल्क आहिनि, इवन के यूरोप ऐं अमरीका ताईं बि हिन जा असरात पहुता. ऐं असरातनि जी अगरि ॻाल्हि कयूं त अमरीका ख़ुदि उते जेको आहे सो गैस जेके चवंदा आहिनि पेट्रोल उहा महांगे हुजण जे सबबु जेको आहे सो तमामु शयूं उरूज ते पहुची वियूं महांगाई. ऐं हिन वक़्तु अगरि ॾिठो वञे त जेका पाकिस्तान कोशिशि कई आहे तालिसी किरदार जी उहा बि वॾी अहम आहे उनखे सपोदात करण जे लाइ.
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर. होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर. नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमामु जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर. राब्ते जे लाइ 03201800003.

0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब के देखा रहे आओ
0: खाली
1: मशवरे में छा थींदो मुंहिंजा मिठा भाउ अमल कबो आहे जीअं बि ॾिसो न ही सिहत आहे सिहत बाबति तव्हां जेको बि मशवरो वठो था या जेको ॾिसो न हिकिड़ो दवा तव्हांजे घर पई आहे थी तव्हां पीअंदो कोन त दवा तव्हांखे उते पई जॻह ते तव्हां हुनखे ॾिसी करे रिज़ल्ट कोन था वठी सघो न मुंहिंजा सजण इहे बि ईअं ई कमु आहे तव्हां खाली मशवरो वठी छॾींदो हर दफ़े इन जो को बि फ़ाइदो न आहे डॉक्टर साहिब खे मां चवां थो तव्हांखे ॿुधाए थो ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ बाक़ी छा आहे असुलु प्रॉपर इन जो इलाजु मौजूदु आहे बिना साइड इफ़ेक्ट जे ठीकु आहे को बि साइड इफ़ेक्ट न आहे डॉक्टर साहिबु वटि दवाऊं मौजूदु आहिनि रूबरू ॾेखारे वञो हलिया अचो ट्रीटमेंट करायो पंहिंजो वज़न वग़ैरह डॉक्टर साहिबु हर शइ चेक कंदो आहे वज़न वारे जो पंहिंजो वज़न चेक कंदो आहे वेट कांटो डॉक्टर साहिबु वटि पियो आहे कदु जंहिं न आहे वधंदो उनजो कदु चेक कंदो
0: आहे
1: उहो मां अॻियां दफ़े तव्हांखे ए टू ज़ेड ॾिसियो मुंहिंजा सजण साईं ठीकु आहे मुंहिंजा सजण साईं तव्हां एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो मज़ीद रूबरू ॾेखारे वञो
2: हिकु ॻाल्हि ॿी वाज़े कंदा हलूं त असां वटि होम्योपैथिक में कहिड़े बि इलाज जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं कहिड़े बि मर्ज़ में जीअं मेडिसिन्स में ईअं थींदो आहे मेडिकल में त परे खां मेडिकल में दवाई ॿुधाई वेंदी आहे भई खंघि थियो त तव्हां फलाणो सीरप पी छॾियो या कहिड़ी तकलीफ़ थिए त तव्हां हीअ होम्योपैथिक में मरीज़ जी हिस्ट्री वरिती वेंदी आहे उनजे कदु उनजे बुत उनजे कलर उनजी कंडीशन जे मुताबिक़ जेको आहे सो हुनजी हेरेडिटी ख़ानदानी हिसाब सां उनखे बाद में जेको आहे सो उनजो टेस्ट वग़ैरह ॾिसी करे पोइ जेको आहे सो दवा ॾिनी वेंदी आहे रिकमेंड कई वेंदी आहे ईअं हरगिज़ दवा ॿुधाई न वेंदी आहे कंहिं बि पेशंट खे असां पंहिंजे 30 सालनि में ईअं घर वेठे कंहिंखे बि दवा इवन उहो पेशंट हे त फ़ोन ते पुछे थो पर असां वटि केरु ईंदो आहे ऐं चवंदो आहे त असांखे दवा ॾियो त असां उनखे बि दवा फलाणे जी घर वेठे जी न ॾींदा आहियूं हालांकि हू फीस बि ॾींदा आहिनि लेकिन सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिन जे करे जो उन पेशंट खे रूबरू ॾिसणो पवंदो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि त हिन जे लाइ ज़ाहिर आहे उनजो वजूहात अॻे दफ़े बि ॿुधायोसीं त कहिड़ी वजूहात हूंदियूं आहिनि सो इन जे करे अधे खे इहा ई रिक्वेस्ट आहे त रूबरू ॾेखारे वञनि वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि चीह मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजी समात में पहुचे पियो अहसान लगारी साहिबु मोरो खां असां गॾु आहिनि इन खां अलावा ॻोठु मोहम्मद ॻोठु वलीदाद खान लुंड खां मोहम्मद सिद्दीक लुंड प्रोग्राम ॿुधे पियो वली उल्लाह सिद्दीकी साहिबु असांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो गॾे जी खां खेसि भलीकार चऊं था सभिनी दोस्तनि खे जेके दोस्त फेसबुक ज़रिए असां गॾु आहिनि वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ गॾु गॾु जो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर एफ एम 94

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीए जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: परदेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई जो चवण हो त अमरीका लबनान में जंग बंदी यकीनी बणाइण में नाकाम रहियो आहे। असासन जी बहाली ऐं ईरानी तेल तां पाबंदीअ जो ख़ात्मो मुतालबनि बे ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो 73वां जन्म दिहाड़ो अज मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जन्म दिहाड़े जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ राय सां मंज़ूर करे वरितो। कड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़वानी बि कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में बि केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना, जुरत ॾिनी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौरु यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक़, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान मुआदे में फील्ड मार्शल जो किरदारु बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौरु सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विच ओभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदारु अदा कयो। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन जो चवणु हो त शहीद राणे जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशल राह आहे। बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणिजी गुज़ारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणिजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

पीपल्स पार्टी एमपीए नईम खरल कैंसर सबब कराची की खानगी अस्पताल में जिंदगी की जंग हाराए वो। नईम खरल केतरे ही अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो। नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट ता पंज भेरा एमपीए भी चूंड वो। सन भर से कोयले की खान में बपोरत फौत, खान में लहण दौरान ड्रम जो जंजीरू टुटी पयूं। हादसे सबब जुम्मन ए नादर राजण फौत थी वया। फौत थियल पोरतन जा लाश जरूरी कार्रवाई लाए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया वया। सामारो भरसा शादी का इनकार से नारी मंगे दे हथा कुहाड़ी हणी कतल। गोठ गुलाम हुसैन खोसो में जवाबदार गुलाम रसूल खोसो पंजी मंगे दी असमा खोसो के कतल करे छड़ियो। लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। वाके जो केस दाखिल। घारो वेझो शहीद अहलकारन की जनाज नमाज टंडो अलियार में अदा कई वही। शहीद अहलकारन अकबर मरी ए मजीद मरी की सरकारी एजाज से तदफीन सलामी भी पेश। शहीद पुलिस के वारसन शहीद अहलकारन के शहादत वाले वाके जो जिम्मेवार टंडो अलियार ए ठठे के एसएसपी के करार दे छो। वारसन जो चवण हो तो एसएसपी टंडो अलियार बिन्हीं पुलिस अहलकारन के जिले बदर कर जै सबब हु परेशान हुआ। कंबर ए लखी गुलाम शाह में आईबीए टेस्ट पास उम्मीदवार जो ऑफर आर्डर न मिलने खिलाफ एहतजाज। उम्मीदवार जो चवण हो तो इम्तिहान 40 का मार्कुन में खड़ी पास थे आयूं। चार साल का ऑफर आर्डर न पाया दिना वन। समूरी सिंध में केतरे ही वक्त का एहतजाज कर रहा आयूं पर सरकार तदारक ना है कयो। लाड़काने में पानी खोट औरतों के कतलेआम जमीन के वालार खिलाफ एहतजाजी रैली। अवामी तहरीक ए सिंधियाणी तहरीक के सदे से कारकुनन जनाह बाग का प्रेस क्लब तीन रैली कढ़ी। अगवाणन जो चवण हो तो पंजाब जा फ्लड कैनाल खोले सिंध के हिस्से जो पानी गैर कानूनी तौर रोको पे वे। सिंध में धाड़िल राज के सरकार की सरपरस्ती हासिल है। मानू घर में भी महफूज ना। कंबर में प्रिया कुमारी की आजादी लाए जस्कम जो एहतजाज। बारड़न जंजीर पाए शिरकत कई। कारकुनन क्रिकेट ग्राउंड का प्रेस क्लब तीन एहतजाजी रैली कढ़ी नारेबाजी कई। अगवाण जो चवण हो तो सरकार पंज साल गुजरण बावजूद प्रिया कुमारी के बाजियाब ना कराई सकी। प्रिया की अमर दाहू कंदे मासूम धी बाजियाब करण जो अपीलू कर रही है। सेठालजा में चार महीनों का मुबैना तौर अगवा जानायल नींगरी बाजियाब न थी। आसफा मुगल की बाजियाबी लाए वारसन पारा प्यादल मार्च। सेठालजा में निकतल नारी जा वारिस एसएसपी खैरपुर ताई प्यादल मार्च एसएसपी खैरपुर के ऑफिस ताई प्यादल मार्च कंदा। वारसन जो चवण है तो पुलिस रुगो आसरा दे रही है। नींगरी बाजियाब कराए परेशानी खत्म कई वही।

ऐं पंहिंजी थकावट में पीअरनि जो आल मल्हायो पियो वञे। पीअ जी मोहबत, रहनमाई ऐं बेलोस कुर्बाननि खे सलाम, जेको औलाद खे सुको सताबो रखण लाइ दुनिया जूं सख़्तियूं ऐं तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे थो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3385 569

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शरन तो
5: कमाजे तो खाजे न दस भी न कमाजे। पर खाजे तो खाराजे न दस भी न खाजे। रुसजे तो परचाजे न तसुरी न रुसजे पोग। रुसजे तो परचाजे न तसुरी न रुसजे भला लाजे तो निभाजे न तसुरी न लाजे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
3: हाँ दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा सेवण जो शहबाज़ एयरपोर्ट टीहनि सालनि खां गैर फ़हाल बणियल बूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी साराह पाणी बिजली ऐं रोड वॾा मसला करार अपोज़िशन जी तनक़ीद गंबट में एच आई वी ते कंट्रोल न थी सघियो वधीक हिकु बार फोत अंग वधी अठ थी वियो मेडिकल दाख़िलाउनि जे लाइ एम डी केट टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान महांगाई जो तूफ़ान पटाटनि टमाटनि मुर्गी खीर ॾही सुधो 25 ज़रूरी शयुनि जा अघ वधी विया ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम ऐं सिहत खे तरजीह तरक़ियाती बजट में घटि

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे दिन भी जारी रहे। हुकूमती ए मुखालिफ धुर मेंबरन पारा एक बे ते इल्जामन ए तनकीदुन वारो सिलसिलो काल भी जारी रहे। हुकूमती मेंबरन सिंध जे वडे वजीर के मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुतवाजन बजट पेश करण ते मुबारकबाद दिनी। जडे तो मुखालिफ धुर जे मेंबरन चयो त बजट जी तैयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद भी न वरतो वियो ऐं उहे उनखे रद्द कनि था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो त मुखालिफ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मनशियात जो वापार में मुलविस आहे उनखे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। MQM जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन के कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी। MQM जे डायरेक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीकु न आहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि। शहर में पाणी, बिजली या गैस न आहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि। बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम न आहे। MQM मेंबर एजाज़ुल हक चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़आल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्तु ऑपरेशन रहण खां पोइ लाॻीतो बंदि आहे। गैर फ़आल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे ॿोॾियुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखे रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिणु चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम घर भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्तु ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिण हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD किट 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD किट जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD किट 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD किट आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिकु ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़ररु कई वई आहे। देर सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बिन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे, जॾहिं त देरि सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिंखां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तरफ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाध रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाध थी,
खीर ॾही बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाध रिकॉर्ड कई वई जॾहिं त एल पी जे जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51% ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52% घटाई थी, जॾहिं त दालुनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंधु हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी तां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़ररु 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंधु हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंधु हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाबु ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्तु डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3,562 अरब रुपये का बजट पेश कर छी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज़ के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजमन रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7% वाध जो पिण ऐलान किया वो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंद रकमू रहंद जिन जो काथो 2,263 अरब रुपये का लगे वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन ब2/3 हिस्सों बणजे तो। उन सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 88.34 अरब रुपया, वफाकी ग्रांट्स 64.33 अरब रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सों पघारों पेंशन खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सों पघारों पेंशन लाए मुख्तस वो है, जडे त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सों कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720.38 अरब रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1,018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जडे त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256.05 अरब रुपया मुख्तस कया वा। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाए 620 अरब रुपया मुख्तस कया वा। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उनके 22.64 अरब रुपये तीन पहुँचाया वो है, जडे त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393.16 अरब रुपया रखा वह, जिन में 148.17 अरब रुपया वडिन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम किया वा। बल्दियाती खिदमतों के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222.30 अरब रुपया, रात खुराक लाए 61.90 अरब रुपया, समाजी खिदमतों के लिए 57.90 अरब रुपये का मुख्तस कया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनजीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनजीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबारन के मदद के लिए 80 रुपया रखा वा। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन, लेंच सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस कया वा। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, MQA पाकिस्तान बजट तकरीर जो बाइकाट किया, जडे अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज कदे अपोजिशन के एतमाद में न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज हों मुख्तस कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी फायदा पहुँचाया वजन।

हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान। खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-55-69।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
0: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
0: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सेवण जो शहबाज एयरपोर्ट 30 सालन खां गैर फाल बणियल बूबक भरसां कायम शहबाज एयरपोर्ट अख्तियारिन खां विसरी वियो। हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पानी बिजली ए रोड वडा मसला करार अपोजिशन जी तनकीद। गंबट में एचआईवी ते कंट्रोल न थी सक्यो वधीक एक बार फोत अंग वधी अठ थी वयो। मेडिकल दाखिलाउन के लिए एमडीकेट टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान। महंगाई जो तूफान पटाटन टमाटन मुर्गी खीर दही सुधो 25 जरूरी शयन जा अघ वधी वया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम ए सेहत के तरजीह तरक्याती बजट में घटताई।

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे ॾींहुं बि जारी रहियो। हुकूमती ऐं मुखालिफ़ धुर मेंबरनि पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि ऐं तनक़ीदुनि वारो सिलसिलो काल बि जारी रहियो। हुकूमती मेंबरनि सिंध जे वॾे वज़ीर खे मुश्किल मुआशी सूरतहाल में मुतवाज़िन बजट पेश करण ते मुबारकबाद ॾिनी, जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि चयो त बजट जी तयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद बि न वरितो वियो ऐं उहे उनखे रद्द कनि था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो त मुख़ालिफ़ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मनशियात जो वापार में मुलविस आहे उनखे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। MQM जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन खे कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी। MQM जे डायरेक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीकु नाहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि। शहर में पाणी, बिजली या गैस नाहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि। बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम नाहे। MQM मेंबर एजाज़ुल हक चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़आल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्तु ऑपरेशन रहण खां पोइ लाॻीतो बंदि आहे। गैर फ़आल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे ॿोॾियुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखे रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिणु चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम गर्भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ हो त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्तु ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिणु हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD KIT 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD KIT जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD KIT 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD KIT आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिक ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज़ में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़ररु कई वई आहे। देरि सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बिन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे, जॾहिं त देरि सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिंखां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तरफ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाधि रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाधि थी, खीर, ॾही, बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाधि रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी।
रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51% ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 2.52% घटाई थी, जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी तां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़रर 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाबु ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल। काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छड़ी आहे, जेमी तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन ऐं समाजी तहफुज जे शोबन के खास तरजीह दिनी वई आहे। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारां सूबाई असेंबली में पेश कयल बजट में सरकारी मुलाज़मन ऐं रिटायर्ड मुलाज़मन लाइ पघार ऐं पेंशन में 7% वाध जो पिण ऐलान कयो वियो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंदड़ रकमू रहंदियों, जिन जो काथो 2263 अरब रुपयन का लगाया वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन 2.5 बनजे तो। उन सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 68.34 अरब रुपया, वफाकी ग्रांट्स 64.33 अरब रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सो पघारों पेंशनों से खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सो पघारों पेंशनों लाए मुख्तस किया वो है, जडे त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सो कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाइ 720.38 अरब रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जडे त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाइ 256.05 अरब रुपया मुख्तस कया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाइ 620 अरब रुपया मुख्तस कया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उनके 22.64 अरब रुपये तीन पहुँचाया वो है, जडे त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393.16 अरब रुपया रखा वह, जिन में 148.17 अरब रुपया वन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम कया वा। बल्दियाती खिदमतों के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222.30 अरब रुपया, ज़रात खुराक लाइ 61.90 अरब रुपया, समाजी खिदमतों के लिए 57.90 अरब रुपये का मुख्तस कया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम, नंढन कारोबारन के मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन, लेंस सपोर्ट, गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस कया वह। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यू पाकिस्तान बजट तकरीर जो बाइकाट किया, जडे अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज कदे अपोजिशन के एतमाद में न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज होंद मुख्तस कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी फायदा पहुँचाया वजन है।

0: हीयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
0: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3589-569

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा सेवण जो शहबाज़ एयरपोर्ट 30 सालनि खां गैर फ़ाल बणियल बूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी साराह पाणी बिजली ऐं रोड वॾा मसला करार अपोज़िशन जी तनक़ीद गंबट में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो वधीक हिकु बार फोत अंग वधी 8 थी वियो मेडिकल दाख़िलाउनि जे लाइ MDK टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान महांगाई जो तूफ़ान पटाटनि टमाटनि मुर्गी खीर ॾही सुधो 25 ज़रूरी शयुनि जा अघ वधी विया ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम ऐं सिहत खे तरजीह तरक़ियाती बजट में घटिताई

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे ॾींहुं बि जारी रहियो। हुकूमती ऐं मुख़ालिफ़ धुर मेंबरनि पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि ऐं तनक़ीदुनि वारो सिलसिलो काल बि जारी रहियो। हुकूमती मेंबरनि सिंध जे वॾे वज़ीर खे मुश्किल मुआशी सूरतहाल में मुतवाज़िन बजट पेश करण ते मुबारकबाद ॾिनी। जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि चयो त बजट जी तयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद बि न वरितो वियो ऐं उहे उन खे रद्द कनि था। पीपी मेंबर मारवी राशिदी चयो त मुख़ालिफ़ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मंशियात जो वापार में मुलविस आहे हुनखे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। एम क्यू एम जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन खे कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी। एम क्यू एम जे डॉक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीकु न आहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि। शहर में पाणी, बिजली या गैस न आहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि। बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम न आहे। एम क्यू एम मेंबर एजाज़ उल हक़ चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़आल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्तु ऑपरेशन रहण खां पोइ लाॻीतो बंदि आहे। गैर फ़आल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे ॿोॾियुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखें रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिणु चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। निंगर जे घर में कोराम गर्भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती निंगर जे वारसनि ॿुधायो त निंगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे निंगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्त ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिणु हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD KIT 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD KIT जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD KIT 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD KIT आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिकु ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, ख़ैबर पख्तूनख्वा में ख़ैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज़ में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़ररु कई वई आहे। देरि सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदरि क़ाइमु टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बिन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे, जॾहिं त देरि सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिंखां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तर्फ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाधि रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी कीमत में 1.16% वाधि थी, खीर, ॾही, बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी कीमतुनि में बि वाधि रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त LPG जी कीमत 0.51% वधी।
रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51% ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 2.52% घटाई थी, जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी तां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़ररु 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाबु ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्तु डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज़ के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजमन रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7% वाध जो पिण ऐलान किया वो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंद रकमू रहंद जिन जो काथो 2263 अरब रुपयन का लगे वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन 2.5 हिस्सों बनजे तो। उन सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 88 अरब 34 करोड़ रुपया, वफाकी ग्रांट्स 64 अरब 33 करोड़ रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सों पघारों पेंशनों से खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सों पघारों पेंशनों लाए मुख्तस किया वो है, जदें 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सों कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720 अरब 38 करोड़ रुपयन जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1018 अरब रुपयन के भेट में 29% घट है, जदें त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256 अरब 5 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाए 620 अरब रुपया मुख्तस किया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो करे उनके 22 अरब 64 करोड़ रुपयन तई पहुँचा वो है, जदें त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393 अरब 16 करोड़ रुपया रखा वह, जिन में 148 अरब 17 करोड़ रुपया वडिन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम कया वा। बल्दियाती खिदमतों के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222 अरब 30 करोड़ रुपया, ज़रात खुराक लाए 61 अरब 90 करोड़ रुपया, समाजी खिदमतों के लिए 57 अरब 90 करोड़ रुपयन का मुख्तस किया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबारन के मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन लेंस सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस किया वह। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यू पाकिस्तान बजट तकरीर जो बाइकाट किया, जदें अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज़ कदे अपोजिशन के एतमाद में न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज हों मुख्तस कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी फायदा पहुँचाया वन।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।